शो में हम सुनेंगे एक इंटरव्यू जो मैंने दिया था। जी हाँ, मैंने इंटरव्यू दिया था 2XXFM में एक दूसरे शो पे जिसकी होस्ट थी सोफी सिंह, और उन्होंने मुझसे मेरे बारे में पूछा और ACT देसी के बारे में पूछा और कैसे मेरी जर्नी रही है। ये इसलिए क्योंकि ACT देसी

कि मेरा सफर आप सब लोगों के साथ कैसा रहा है सिंस 2019। आप है मेरे यानी आपके अपने देसी आरजे विकास के साथ और ये है एसीटी देसी जो आता है हर शुक्रवार रात 8:30 बजे इन कैनबरा ओनली ऑन 2XXFM 98.3 पीपल पावर्ड रेडियो एंड हैप्पी 50 इयर्स ऑफ 2XXFM। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वडक्कम।